0: प्रोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्ज्वल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: Sanche Suru FM Studio Time
2: It's 6 PM बिहान को 6 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई ऑफसेट प्रेस सोलु दुकुन नगर पालिका 5 सोलु कुंभू

को अंतराल में दुई हिमाल सफलतापूर्वक आरोहण करूंभा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त कर साथ ही आगामी दिन में लकाराम तामाङ को पाइला पाइला में सफलता रही रहोस शुभकामना बुने बाबा मम्मी दावा तामाङ नी तामाङ श्रीमती मनीषा तामाङ जेठा दाई भाउसू लक्ष्मण तामाङ मनीषा तामाङ माइला दाई रामकुमार तामाङ जेठी दीदी भेना सीतापुरी तामाङ सुवा तामाङ माइली दीदी भेना गोयापुरी तामाङ ज्ञान बहादुर तामाङ कान्छी बहिनी गंगापुरी तामाङ भान्जी अनन्या तामाङ छोरी मनसुन्दन तामाङ स्नेहा तामाङ तथा समस्त बोमजन परिवार सोलु दुखकुण्ड नगरपालिका नौ गोराखानी सम्मान डाँडा सोलु खुम्बु।

0: नागरिकता एक कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना
1: अदली सेवा ग्रही महानुभावर यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रवाहरी सेवा प्राप्ति को सहजीकरण का नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर उक्त कक्ष निःशुल्क सेवा प्राप्त करना सकता होने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष में संपर्क राख्न अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कति को प्रलोभन नगरी आपको सेवा लिना हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कहीं गुनासो आए में गुनासो सुने अधिकार कार्यालय प्रमुख संपर्क राख्न सकू
0: कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय विराटनगर
2: Don't see the left and some saw.

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो
3: Soundcheck. City FM. It's studio time.
4: It's 7 a.m. Behind Kusad Bajo.
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलु दुतुन नगर पालिका 5 सोलु कुंबू

0: नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना
1: आदरणीय सेवा ग्रही महानुभाव यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रवाहने सेवा प्राप्ति को सहजीकरण को नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर उक्त कक्ष निशुल्क सेवा प्राप्त कर सकने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष में संपर्क राख् अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कोई को प्रलोभन नगरी आपको सेवा लिना हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कने गुनासो आए में गुनासो सुनी अधिकार कार्यालय प्रमुख कोई संपर्क राख् सकने
0: कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय विराटनगर
1: स्थानीय तह में दर्ता भएका ई रिक्सा को दर्ता प्रतिनिधि तथा नवीकरण करने संबंधी सूचना
2: यातायात व्यवस्था कार्यालय में दर्ता भई स्थानीय तह में हस्तांतरण भएका ई रिक्सा पुनः यातायात व्यवस्था कार्यालय में दर्ता गर्दा यदि कार्यालयले जारी गरेको सकल बिल बुक भएमा सोको आधार में स्थानीय तहबाट सुरुवा फिर्ता गरेको निश्चय समेत राखी सोही दर्ता नंबर कायम हुने गरी अभिलेख खड़ा गरिनेछ। यदि यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले जारी गरेको सकल बिलबुक नभएको तर स्थानीय तहले जारी गरेको सवारी दर्ता प्रमाणपत्र बिलबुकमा यातायात व्यवस्था कार्यालयले जारी गरेको सवारी दर्ता नम्बर समेत उल्लेख भएको खण्डमा स्थानीय तहले जारी गरेको सकल सवारी दर्ता प्रमाणपत्र राखी साविकको नम्बर कायम गरी बिलबुकको प्रतिलिपि दिनेछ। त्यसै गरी यदि यातायात कार्यालयले दिएको जाँचपास प्रमाणपत्रको सकल परिमा पनि सोही सकल पत्र को आधार में यातायात कार्यालय ने जारी गरेको दर्ता नंबर कायम गरी सवारी दर्ता प्रमाण पत्र को प्रतिलिपि जारी गरिनेछ। सोझै स्थानीय तह में दर्ता भएका वा यातायात व्यवस्था कार्यालय में दर्ता भई स्थानीय तह में हस्तांतरण भएका ई रिक्साहरूको सवारी दर्ता अभिलेख किताब स्थानीय तह में जेएनजी को आंदोलन को क्रम में जली नष्ट भएको अवस्थामा स्थानीय तह में दर्ता भएका एवं कर चुक्ता गरेको प्रमाण को आधार में सकल सवारी दर्ता प्रमाण पत्र बिलबुक समेत राखी सरुवा दर्ता सरह दर्ता गरिनेछ। सेवाग्राहीले नागरिकताको फोटोकपी दुई प्रति हालसालै खिचिएको फोटो सवारी दर्ता प्रमाण पत्रको फोटोकपी सवारी साधनको इन्जिन नम्बर र चेसिस नम्बर देखिने गरीको फोटो सवारी साधनको पूर्ण भाग देखिने गरीको फोटो संलग्न राख्नु पर्नेछ। यदि स्थानीय तहमा सवारी कर तथा नवीकरण समेत गरिएको भएमा उक्त शीर्षकमा थप कर लाग्ने छैन।

0: सोलू एफ एम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: सन्चे सोलू एफ एम स्टुडियो टाइम
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई अफसेट प्रेस सोलू दुतकुंडा नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Sanche Suru FM Studio Time
2: 10 AM बिहानको 10 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारामाई अफसेट प्रेस सोलु दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन चौकमा।
2: होंडा का विशेषता
3: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
2: उत्कृष्ट माइलेज
3: राम्रो रिसेल मूल्य
2: टिकाऊ र भरपर्दो
3: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
2: BS6 तथा नया नया भर्सन बजार में लॉन्च भइरहेको
3: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी।
2: हाम्रा सेवाहरू
3: ओखलढुंगा र खोटाङको दिक्तल बजारबाटै फाइनान्स को सुविधा सहित होंडा का सबै मोडल का मोटरसाइकल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
2: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनु का साथै सर्भिसिङ सेवा
3: एक्सचेन्ज को सुविधा सहित मोटरसाइकल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्भिस सेवा निशुल्क दिइने
2: अनलाइनबाट बुकिङ गरे भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ।
3: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्भिस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गुरुमारे भुञ्जाङ ओखलढुंगा।
2: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852888002 र 9842803000।

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन चौकमा।
2: होंडा का विशेषता
3: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
2: उत्कृष्ट माइलेज
3: राम्रो रिसेल मूल्य
2: टिकाऊ र भरपर्दो
3: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
2: BS6 तथा नया नया भर्सन बजार में लॉन्च भइरहेको
3: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी।
2: हाम्रा सेवाहरू
3: ओखलढुंगा र खोटाङको दिक्तेल बजारबाटै फाइनान्स को सुविधा सहित होंडा का सबै मोडल का मोटरसाइकल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
2: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनु का साथै सर्विसिंग सेवा
3: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
2: अनलाइनबाट बुकिंग गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ।
3: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गुरुमारे भुजाङ ओखलढुंगा।
2: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852988002 र 9842803000।

संस्कार और संस्कृति के वो मान्यता सबने दूसरी सके आजकल आत्मता यही यति कार्पेट नै हो। विगत तीन दशकदेखिको सुमधुर साथ यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सिनु होला। यति कार्पेट, कार्पेटको शहनशाह।

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन चोकिया।
2: होंडा का विशेषता
3: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
2: उत्कृष्ट माइलेज
3: राम्रो रिसेल मूल्य
2: टिकाऊ र भरपर्दो
3: अफ रोड का लागि पनि उपयुक्त
2: BS6 तथा नया नया भर्सन बजार में लॉन्च भइरहेको
3: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी।
2: हाम्रा सेवाहरू
3: ओखलढुंगा र खोटाङको दिक्तल बजारबाटै फाइनान्स को सुविधा सहित होंडा का सबै मोडल का मोटरसाइकल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
2: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनु का साथै सर्भिसिङ सेवा
3: एक्सचेन्ज को सुविधा सहित मोटरसाइकल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्भिस सेवा निशुल्क दिइने
2: अनलाइनबाट बुकिङ गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ।
3: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्भिस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गुरुमारी भन्जाङ ओखलढुंगा।
2: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852988002222 र 9842880300।

0: सोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: सांचे सोलू एफएम स्टूडियो टाइम
2: 3 PM दिउँसोको 3 बजे
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वालामाई अफसेट प्रेस सोलू दुतकुंडा नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: सन्चे सोलु एफएम स्टुडियो टाइम
2: इट्स 4 PM अपराह्नको 4 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुकुन नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: टाइम चेक सोलु एफएम स्टूडियो टाइम
2: 5 PM साँझको 5 बजे
0: टाइम चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुपुन्न नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: टाइम चेक सोलु एफएम स्टूडियो टाइम
2: 6 पीएम साँझ को 6 बजे
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुकुन नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू

0: radio next to your heart.
1: Solo FM 101.2 MHz.
2: TWR Nepal Nesur Jo Margadarshan Radio La Dasidile Jai Masi. Tayang Ti Niji Kyung Mogoi Dakpi Shin Kyung Tang Dukpi Parlasang Niji Ki Tiang Duk Liamu Keni Bini Liamu Keni Dwabing.
3: आरिंग देतियोला लोंगसंग कंज दिले समझे मिशे आरिंग नें देतियोला मेरी की दोगा क्या नहीं देती बोला कौन जगह सों लाभ नीतिलोला दीरी जी शकला तनंगा दे वहाँ लिप सों लसे दरबी जितना गुबी जी शकला दरबी जी प्रभाव से होतां तेंगे तू कौन जो सुनते सिग्रां कौन जो इंसिने तिके खड़ा से हो यीशु कृष्णा कोरोना छोची नाम सों तिकी दरबी दिक्की छावा चुनने दिन नितमा दरबी दाखिला कुरुला तुंगुला फिर नाम सों खोतरां चेंग बु कौन जो जुनां वै समको आतिरां तंजी कौन जो जुनां वै सिरुक पड़ला भुगजने ताम जाइन तैं चुनला छवै यीशु कृष्ण फिर सुना गमला तमा बाय बाय टिकुप सुना गमला जमनिंग जी तेरी नीति वे पंजला जाओ कि जरूर तम लाम मला उतना क्या नहीं तेंदे नहाए लोग जो जमनिंग जी था मला लोग नहीं लोग डुबोसुं सुसेन तमा तुम्हीं नहीं डुंबला लोग नहीं लोग डुबोसुं सुसेन मिशा लोग भी जी लोग था ला लोग नहीं डुबोसुं सुसेन तमा तुम्हीं जोकता ला लोग नहीं था रोसुं सुसेन ती खेला की नीति वाला कौनसा जो आचरण मिनोर सिने थमुंगे समाजी दौड़ेंगे थोड़ा जगह दे कौन जगला जिमला नाम हो तुम से सिरो नलाई की दांते वाला थमुंगे कौनसा सेम सब लाजी थोड़ा तमा खो वाला गालों मुक्की थोड़ा तमा छेतर छेतर तंग भूमि की जीसो सोती वा तुम बुला छोड़ी ना तमा चले की निस्पीति वाला तुम जाने तेर जीवे चुरुंगा छवा जिसना लो बुनी जी बमला मल्ला प्रला लो पढ़ला ये दो क्या नहीं सिखाओ तम सरा जी ना सुन लो जो क्या तेरा मिर्ची गोतिवा जी नो तमा ते मोदी को लाम तिवासा जी नो तमा ती जुगला से तो मितवा जी नो तमा ती विची तुरसा ने सर पुरमें दोला कुंजी मिजी नो ने मना वे मल्ला तेने नो की जितां भी चाहे इसमें चंग बनाएं तमा नीतोला की पर्ची मिश्री दूर कर ला मुतुगे ताम दर्शन है तमा लोग ना छलीन रहा पर ला नते पास से युकुम छलीन तमा ना हो तबंगे मिश्री दूर लोमला गर्मीसा होए तमा ना ते पिरामिड नंग ला सुनीसा होए तमा ते शे मितुगे रो युकुम गाम दिवसां थंग होए जिला तरंसां दाग बीजे पूरा इंजीनियर सिवे इन नंगा दे भारत वाला दिन नहीं जुगनो नेती पिरामिड दी नंगलाम मोतुक की मोतुंगो लाम दिवा चिला दो इन नसने तुझे उतुंगे जंग बजोक नंगे मंगलाग बचाने हाँ कोचानो तमते चिला से मचुए गो युकुम इंजीने तामसा हाँ कोचानो नुसन खेला की मोतुंगे की दासला चाला ये थाने पुरुषों से जेन कैसे रे पैमा थेनु सो जुए तमासे खेल जी पाऊं जी तगड़ा न तिकी नंगे से लुम्नी नो तमाचे उन्होंने तिकी से जुए तमान्या तरो मांग हाँ कोतांग निमुला सेरें जी जिमिशा लुम्नी नितुए फारला था तो क्या जाने छेतुम लागा जी नो निमु कुंगला जुए जी ती जलो जला मधुमो तब के जिमिजी तिवाला सांग ये खोई जुए सिनिनो जी नो तमाते नुबला ते गां जुए तमान नुबला ती तिला तिवा तिला आने नितुए मिजला देनी ते जी नो तमाते नितुए मले हिम जिम की शिवते मिंदे सिने तिवे जी उदना ती चावया मिन जिमिजी तिवाला खोरे थागरंबा जोकुन नो जी नो तमाते विजी पिरामिड लाम संभो बुंदे से तिवा लावा तिवा तमा साप तिवा गोतिवा तमा तेरे पर जी चालक तिवा ये जोकी नो यो खरे फारो तिवी जरूर तमा तिवी की ला उतुम नो जी नो तमा तिवी मुलाती इखवासिन तमा तेरा जे जिसने नो जी नो तमा लोग तिजे तेरे काम की तिलसे नहीं जोकी नो तू कहने तीन ये मला ये लला ये फायन ये तीन लाम कहाँ हुआ शुरू कर लाम इधरन चंबो पेन तयन लोंसन लो तांग तमे से चुके सांग लला छुटो फायन मेलकवा फायन तांग कौन जगी कर लते रो मेलकवा ये नंदो जाने लोंग कौन जगी ने बोलते ये बोलो नो इंसिन दागबी ये कौन जला जो अचिरंग हो जावे तमे लेमा जाने लाख अचिरु चुलते इधर सासे लेमा निगें जो सेनी सिंधी सिनी सिवे तमा दुगरन जानी कौन जके समझते कौन जरन जानी जुनाम जीवे तमा कोई की दाखवला कौन जके नागम शो की थोकला खोले की से वो यीशु क्रिस्ट लाम तमा नंगो इंसिलो कर लाम इकारे से कोई की दागु सला छरना आसुं जुनाम छवे सेंगे छोई रोकता लाम नला गाला वो लेमताम सिरते कोई की भूमि नींद जोरा लावें

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Sound check. Surya Khan. Studio time.
4: It's 7 p.m.
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुपुन नगर पालिका पांच सोलु खुम्बू

0: Sound check. Solu FM in studio time.
1: It's 8 p.m. रात को 8 बजे.
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलु खुम्बु.
1: यो समय किसान पाई प्रोडक्ट्स प्राली को हो.
0: राष्ट्र को शान किसान.
1: अ कंप्लीट फाइटिंग सॉल्यूशंस.
3: तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क सुन्दै हुनुहुन्छ. अब सुरु हुन्छ कार्यक्रम देश परदेशको पुनः प्रसारण.

0: साइंचेक सुरु एफएम स्टूडियो टाइम
1: इट्स 9 PM रात को 9 बजे टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलु खुम्बु
2: प्रिय श्रोता अब प्रसारण हुँदैछ TWR नेपालको प्रस्तुति कार्यक्रम मार्गदर्शन कार्यक्रम सुनेर आशीषित हुनुहोस्